हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज देन तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोरा फिर गया पर उना जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे ओथे दे ओथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नामदेव नु मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उना दे दिमाग ओथे दे ओथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हरमंदर विच उदों भी बैठे सन नामदेव हरमंदर विच अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परां हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शिया गुरु अर्जन साहब ने ते गुरु दा दित्ता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह दी खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

फिर नरकां दा पागी बन जांदा है। असी गुरमुख बनना है, गुरु के लेखे अपने आप नूं लाना है। श्वासां नूं चंगे पासे लावांगे तां साडा लोक परलोक सौर जाएगा। इसलिए गुरमुखां नूं की चंगा लगदा है।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहेगुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत

0: कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर।
1: कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार कर लगता है।

मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नूं जपन दा चेता करांदा है तां कहिंदा जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे हन उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इस लई जे जपना है तां फिर हुणे ही जप लै। चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जे भा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे, इस लई जे जपना है तां हुणे ही जप लै।

आप जी शिव इतने खमा जाच कर कीर्तन कर दिया बाणी पढ़ दिया आप जी अनंत शिव कंध को मैं खुला ही होगी आप जी अपने दास जान खमा करोगे आई हम संगता वालों पूज्य स्थान वालों बेंत माया शोर पीठ हाजर पास जिन्हें अखजाने माया शोक जाने भरपूर करने स्वत खास का जाच कर पोलन चुको दिखमा फतेह।

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुग अटल।

बादशाह नु क्रोध चढ़ गया, सिपाहियां नु हुक्म दिता एदे हाथ पैर बन के इनू गंगा दे विच डोब के मार दियो। मैं देखना इस दा राम इस नु किस तरह बचांदा है। कबीर साहब दे हथां पैरां विच बेड़ियां पा के गंगा वाले सिपाही लै के तुर पए।

0: छिपाई आली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहला ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआं ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया की। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उत्ते बिठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए ने। चार चफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोन लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे होए अपनी श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।
1: आपे पावक आपे पवना
0: आपे ओ हवाए

आगे आप ही हवा। जे अकाल पुरख ने मेनू साड़ना है ते बचा कोई नहीं सकता है। जे उन्ने मेरी रखिया करनी ते फिर मेनू कोई साड़ नहीं सकता।

पर ओ जड़ा हाथी ओ कबीर साहब नू लताड़ता नहीं। बड़ी कोशिश की थी पर ओ जड़ा हाथी अगले दोनों पैर नवा के कबीर साहब नू मथा

आवत रलिया जवानी दे मान विच जोवन दे मान विच नचदा टपदा इंसान किसे दी परवाह नहीं करता। एदा ए मतलब नहीं कि सोना रूप नहीं होना चाहिदा या जवानी नहीं चाहिए। साहब जी कहते हैं जो सोना रूप है ते मुबारक है ते जवानी है तेरे ते मुबारक है तेरे।

तू हाथी के सवार होके गहने पाके कीमती वस्त्र पाके सिर ते सोने का छत्र चुला के तू आके मैं बहुत खुश हो गया। तू भावे समझदार है, मैं बहुत खुश हो गया।

ता पिता ने किया बेटा ओत ज्योति जोत समा गई। पर उन्हां दी जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे। ते पुत्र कहन लगा पिता जी मैं फिर आनंदपुर साहब जावां।

दिव्या बेटा ये 100 रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा से रख के मेरे वालों मत्था टेकी 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब च पाया धर्मशाला पहुंचे है अरदास करके ये सारिया संगत उज्जैन तो आनंदपुर साहब को तुर मिले हमने मन में सोचता जाता गुरु का दरबार कैसा होगा क्योंकि उसकी बाणी में

संगत गुरु दरबार बैठी जिस तरह आप बैठे। कीर्तन की समाप्ति हुई, कुछ संगतां बैठिया रही तो साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछ रहे हैं, तुसी कीर्तन सुने तुहानू कैसा रस आया? हुण जिहड़े ते रोज कीर्तन सुनते सन कहन लगे महाराज सुभा दा रस है, क्योंकि साडा सुभा बन गया है रोज कीर्तन सुनना। कोई कहन लगा कन्ना दा रस है, क्योंकि कन्ना दे नाल कीर्तन सुने। कोई कहिंदा जुबान दा रस है, क्योंकि मूंह दे नाल कीर्तन कीता। ते साहिब जी सहजधारी नूं पुछदे ने, ओ सिखा तू नहीं बोलदा तेनू कैसा रस आया? और ये कहिंदा जे मैं आखां सुभा दा रस है, पहला मैं कदे कीर्तन सुनिया। जे मैं आखां जुबान दा रस है, मैं खादा कुछ नहीं। पर एक गल है, जो जो कीर्तन सुने मन पट गया, नहीं मन मन दे विच ही टिक गया, आखो सतनाम श्री हो। कहन लगा महाराज ये सिदक ते संतोख दा रस है, आखो सतनाम श्री हो। पाणी सुन के मन विच संतोख और सिदक आ जाता। साहब जी कहन लगे सिखा निहार, एक महीना सेवा की थी। और एक दिन 100 रुपया पिता वाला और 500 अपने वालों गुरु साहबान भेट करके मत्था टेके आ, ते नाले कहन लगा महाराज कुछ बख्शिश करो ताकि मैं हुण घर नूं जावां। कड़ा प्रसाद दिता कि सिखा ये अपने पिता को नहीं साडे वालों, एक सरबलोह का कड़ा दिता जिहड़ा कड़ा सी हाथ विच बने, नाले वचन दिता कि सिखा इस कड़े का अदब रखी, जो मंगेगा गुरु नानक तैनू देवेगा। बड़ा खुश होया, खुशी खुशी आनंदपुर साहब को तुरे। पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब तो बाहर आया तो सारा आनंद गुआच गया, आखो सतनाम श्री। माया वाली फिरती फिर जाग गई। जिवें असी कई बार कीर्तन में बैठे होने ये बड़ा आनंद आता, जब गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं तो यह आनंद भुल जाता है, होर गल्लां याद आ जाती। इस तरह आनंदपुर साहब को निकले तो सारा आनंद गवाच गया। कहन लगा मना बहुत माड़ा गीत है, 600 रुपया तो रोड़ के आ गया, एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने जिहड़ा पिता घर रोज ही बनाता है, एकड़ा दिता है। कहिंदे सन जो मंगेगा तैनू मिलेगा, इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हें मैनू 1000 रुपए कितों दे देने, आपको सतनाम श्री हो। उदास हो गया ते गुरु की निंदा करता हो।

एक महीना सेवा भी की थी। 600 रुपया मैं गुरु नूं भेटा कीता ते गुरु ने मैनूं की दिता है।

के एक मूर्ख आए, वो की जाने गुरु का वचन की होता है। जे तू मेरे नाल सहमत हो में गुरु का वचन ते कड़ा उदे गुरु असी ले ली ते साथ संगत कई परिवार बड़े भागा वाले होते। ध्यान सिंह माजरिए देखो, वो मन में कितना प्यार है, अगों वो

ने बड़ा खुश पिता ने पूछिया सुना फिर बेटा गुरु दे दर तू की लैके आए जद के यार गुरु तू की लैके आए ते मोरा दियां थैलियां अगे कर दी ते जद इन्हें यह कहा मैं

ते मैं चाहना तेरे दुध की कीमत चुका दी। एक गल कहनी चाहवांगे नौजवान बच्चे या वो भी जेड़े मापिया की कदर

पानी का वो गड़वा बिस्तरे से डोल देता, बिस्तरा गिल्ला हो गया, कपड़े गिल्ले हो गए, हरि सिंह की जान खुल गई और नींदर नहीं आती क्योंकि कपड़े गिल्ले, एक सर्दी, उठ सकदा नहीं क्योंकि मां नाल वादा कीता है मैं सौवांगा, पासी मारदा है बिस्तरा गिल्ला, नींदर नहीं आती पर सास संगत मां ते फिर मां ही ना, मां पासा मार के लपी पई, अखा बंद पर जागदी, अज मां का मन बड़ा दुखी हो रहा है, अज मेरे पुत्र नो नींदर नहीं आ रही, दिन चढ़िया

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिया, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे, अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे। हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असि ता उस दाते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उन्नताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चा नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी ता सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा तुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही ता कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी ता अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया ता मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सजना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा, फिर लोग सुखिए।

परम सम्मान योग गुरु प्यारी साध संगत सारे भैणा वीर गज बज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भैणा वालों आवाज नहीं आई, विसाखी का पवित्र दिन है, प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। जिहड़ा जन्म हुंदा उहदी मौत अवश्य है, पर कलगी वाले पातशाह कहिंदे ने कि प्रगटो, जिहड़ा प्रगट हुंदा उहदी मौत नहीं। प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। सिर्फ 15 मिनट का टाइम मिले, एक बार सारे भैणा वीर गज बज के फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। 15 मिनटां विच सिर्फ नमूने दे मुताबिक, क्योंकि जो ढाडी है इन्हां दा संबंध जिहड़ा है विसाखी दे नाल है। छेवें पातशाह ने यह ढाडी पैदा कीते ते सिख इतिहास नूं संभालण लई, सूरमिया ते योध्यां दा इतिहास संभालण लई ढाडियां दा कम वार गाउणी। आ वेखो 80,000 दा इकट्ठ है, 1699 दी विसाखी है। संगतां अपना दसवंध लै के दुनिया भर दे विचों पावन धरती आनंदपुर साहिब पहुंचे होए ने। 80,000 दे इकट्ठ विच कलगी वाले पातशाह ने कृपान धोई, और कृपान जो गुरु के सिख लैके खड़े ने, और मंग कीती कि एक सिर दी लोड़ है। बड़े बड़े सिर झुक गए, नीवियां पा लईयां ने, और कलगी वाले पातशाह ने आख्या कि फिर आख्या एक सिर दी लोड़ है। जदों तीजी वेर आख्या है, एक गभरू उठे जेदी 30 साल दी उम्र है, जेदा ना है भाई दया राम, और जेदे माता दा ना शोभा देई और पिता दा ना मैया राम। और उठ के कलगी वाले पातशाह दे चरणा विच आके कहण लगा, पातशाह लेट होण दा कारण डर नहीं, मैं जो लेट उठिया मेरे अंदर शशो पंज सी कि एक वेर चीज अर्पण कीती दोबारा भी अर्पण कीती जा सकती है। कहण लगा, जदों 13 साल दी उम्र विच मैं अपने पिता मैया राम दे नाल तुहाडे दर ते आया सां, जदों आ सिर झुकाया तुहाडे चरणा विच सिर ते उदों दे दिता। कलगी वाले पातशाह ने कृपान अगे कीती कि गबरुआ आ कृपान फड़ के लड़ सकदे? कहण लगा, काम हमारा तोलै तकड़ी, नंगी करद कबू नहीं पकड़ी, किड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। कलगी वाले पातशाह अंदर लै गए ने और सहमे हुए सिर देख रहे ने। उदू बाद दूजी वेर आए ते दूजी वेर सरदार धर्मचंद जी उठे, पिता का नाम माता का नाम अनंती, पिता का नाम परम सुख, और जदों उठिया इनू भी लै गए खून दे नाल लथपथ कृपान।